0: चला रैप पकड़ने।
1: सूरत से सीधा अहमदाबाद आया, खेलने के लिए संग डांडिया भी लाया। Tell me baby girl, what is your name?

0: अस्सलाम वालेकुम खान बाबा, ईद मुबारक।
1: वालेकुम सलाम राजेश, तुमको भी ईद मुबारक। तुम किधर है? तुम यहाँ पे ईद का चांद की तरह आता है।
0: खान बाबा, ये मेरा दोस्त अमर है।
2: ईद मुबारक।
1: तुमको भी ईद मुबारक।
0: आपसे एक जरूरी काम था।
1: बोलो बोलो बच्चा, क्या हाजिर है? बिलायत? बिलायत क्या चीज है? हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो तुमको चांद पे बेच सकता है। बैठो बैठो, पहले तमाशा देखो बच्चा।

0: परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेश वंदन। Can I ask one question? About yesterday? MENSAM? Yesterday's class? What did you feel? Any correction in your real life? कल के क्लास से आज के आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करेक्शन हुआ कि वैसे ही चल रही है? बोलिए। अनम्यूट कर करके बोलेंगे।
1: हाँ
0: जी
1: गुरुदेव, कल के क्लास के बाद हमको ये समझा है कि मतलब कपड़ों का या फिर क्या हम खाते हैं उसका मतलब हमारे डेवलपमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। हमारी हैप्पीनेस अनकंडीशनल होनी चाहिए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए हमें खुश रहना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया। आज प्रैक्टिकल उसमें से कुछ हुआ आपसे?
1: नहीं गुरुदेव, आज तो कुछ नहीं।
0: आज कुछ नहीं हुआ आपसे? कुछ हुआ बंधु? बोलिए कौन है? बोलिए। हाँ जी
2: थोड़े प्रश्न थे आपसे।
0: मैं प्रश्न बाद में लेता हूँ, पहले कल का एक्सपीरियंस में आज का एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ, इसने प्रैक्टिकल किया क्लास पर। हाँ जी बोलिए।
3: जैसे कि आपने बोला था संयम में ही आनंद है, जैसे कि आपने बोला था संयम में ही आनंद है, इसलिए ना आज मतलब मैंने ना पूरा मतलब पूरा प्रतिक्रमण किया है और मेरा आधा लर्न भी हुआ है।
0: बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
3: मतलब जो सब्जी मुझे पसंद नहीं थी ना तो वो मैं खाती नहीं थी, मतलब मुझे से सिलेक्टेड कुछ तो खाना पसंद था, तो आज मैंने कुछ तो नया ट्राई किया है, अब मुझे पसंद भी आने लगा है।
0: बढ़िया, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा अच्छा किया आपने, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया आपने। और बस ए वन पर्सन के लिए बोलने। हाँ जी बोलिए। हाँ जी
4: वो आपने का समझाया फेलियर के बारे में कि उसके बारे में नहीं सोचना है, कैसे हमें हमेशा आगे बढ़ना है, तो उसने बहुत हेल्प करी। मैं इतने दिनों पे बस ओवरथिंक कर रही थी क्या करें कैसे करें, बट अब बहुत ऐसा रिलैक्स फील हो रहा है।
0: धन्यवाद। मैं क्वेश्चन आंसर के तरफ बाद में जाता हूँ, पहले आज के सब्जेक्ट को हम थोड़ा टच कर लें। कैसे लगता है आपको? आप रील देखते हो, कितने मिनट की रील होती है आपके देखने की? मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा विषय नहीं है इसलिए मैं जानकर ले रहा हूं आपसे, मैक्सिमम कितने मिनट की रील देखते हैं आप? कितने से 15 मिनट? मैं 30 सेकंड के, 30 से 40 सेकंड, यानी 15 मिनट में कम से कम आप 20 से 25 रील देखते होंगे। और 20 से 25 रील में 20 से 25 अलग अलग सब्जेक्ट आते होंगे। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, 15 मिनट की रील देखने के बाद उस 15 मिनट में से आपको कितना याद रहता है? नहीं कितना?
3: तो मतलब
0: टाइम पास हो के, टाइम पास इज डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 15 मिनट रील देखी, उसमें 20 से 25 रील देख लिया आपने, वो 20 रील में से आपको कितने रील का सब्जेक्ट याद रहता है?
3: दो
0: दो तीन है ना। बाकी जो सब्जेक्ट है, जो बाकी जो रील देखी, वो आपके दिमाग में गई नहीं गई? दिमाग में गई, दिमाग में गई है, याद नहीं हुई है। अपने जो जो देखते हैं आप, जो जो आप देखते हैं वो दिमाग में चला गया है, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। अब वो जो अंदर में पहुंचा, आपको ध्यान में आ रहा है? मैं बिल्कुल, एक मैंने एक 10-15 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि अभी न्यू जनरेशन जब ईमेल आदि कुछ करती है तो उसमें थैंक यू प्लीज शब्द का प्रयोग करना उन्होंने बंद कर दिया है। तो उस पर आर्टिकल था, और आर्टिकल में से एक बात सामने आई कि थैंक यू और प्लीज शब्दों पर वर्किंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी एनर्जी लगती है, इसलिए वो शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया उन्होंने, ओवरलोड हो गया। अब ये 15 मिनट में आपके 20 से 25 रील दिमाग में गई है ना। यदि आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में आप पढ़ रहे हो और हर 30 सेकंड में सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, 30 सेकंड में सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो आपका दिमाग किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएगा? ये हुई 30 सेकंड में, पहले 30 सेकंड में मैथ्स आया, दूसरे 30 सेकंड में साइंस आया, तीसरे 30 सेकंड में हिस्ट्री आई, तीसरे चौथे फोर्थ में ज्योग्राफी आ गई, फिर फिफ्थ में सिक्स में अकाउंट आ गया। हर 30 सेकंड में यदि सब्जेक्ट चेंज होता चला जाए तो आप किसी सब्जेक्ट को समझ पाएंगे क्या? हेलो,
3: बहुत कंफ्यूजन होगा कि क्या,
0: यस कंफ्यूजन होगा ना,
3: होगा कि क्या याद रखें,
0: क्या याद रखें। आपको नहीं लगता कि दिमाग उस पर काम करके थक जाता है? मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा हूं क्योंकि आप देखते हैं, इसलिए 15 मिनट तक अपने 30-30 सेकंड के रील्स स्क्रॉल करने के बाद आपका दिमाग कैसे था, फ्रेश होता है या थोड़ा सा हेवी हो जाता है? हेलो, थक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग ने काम तो किया, दिमाग ने वो और काम किया, दिमाग थक गया है ना, उस कैशियर जैसे है ना, और उसको उसको रील रील रील रील रील रील रील रील रील, और इस सारे रील में वो कंपनी पैसे कमाती है और तुम्हारा दिमाग खोता है। मैं मेरे सामने जो सोशल मीडिया टीम है उसने मुझे एक बार जानकारी दी थी कि अभी लोग बड़ी रील देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 सेकंड की देख पाते, बोले 30 सेकंड के आगे तो पेशेंस छूट जाते हैं। आपको जो बात कहनी हो 30 सेकंड में कह दो। मैंने कहा 30 सेकंड में बात कह दो और 30 सेकंड में कह दूंगा तो मैं अंडरस्टैंड होगा क्या? कल्पना करो, अभी अपना क्लास चल रहा है, मैं हर 30 सेकंड में सब्जेक्ट चेंज करता चला जाऊं, हर 30 सेकंड में सब्जेक्ट चेंज करता चला जाऊं, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? ये सारी जो लाइव तुम लोगों ने बनाई है सोशल मीडिया ने और सोशल मीडिया के एडिक्शन ने, सब रियल लाइफ में गए, और रियल लाइफ का सूत्र क्या है? रियल लाइफ का सूत्र है कि लो बचाओ संभालो। मैंने डे वन में आपको कहा था कि आपका ब्रीदिंग प्रोसेस भी बहुत शालो हो गई है, बहुत शालो ब्रीदिंग करते हैं, और शालो ब्रीदिंग के परिणाम पता है कितने भयंकर सामने आ रहे हैं, कितने भयंकर सामने आ रहे हैं। अभी कल की ही दो केसे मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूं, अरहम बेबी की बड़ी डेंजर केसे हुई है, दोनों की डेथ हो गई है आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 4th डेज डेथ हो गई है कि माँ को दूध नहीं आ रहा था तो उसको दूध पाउडर का दूध पिलाते थे और बच्चे को अचानक इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि बच्चे ने उल्टी जो वोमिटिंग जो है, वोमिटिंग हो रही थी उससे वापस निकल ली और वोमिटिंग निकल गए तो वो चले गए लंग्स में अनकॉन्सियस एंड नाउ ही नो मोर। ऐसे सेकंड केस, ये नगर की केस बताई मैंने आपको, दूसरे केस सदर दूर की है उसकी भी हालत हो गई। इस माँ ने सारी स्क्रॉल देखी, रील देखती नहीं, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड डाइजेस्ट कुछ हो ही नहीं रहा है, स्ट्रेंथ आ ही नहीं रही। अभी तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पहले डाकघर हुआ करता था, पोस्ट आती थी, डाकघर में डाकिया बैठता था, वो एक ही काम करता था, जितनी डाक आती थी उस पर ठस्सा मारता था, ठप ठप ठप ठप ठप मारता, उस मारते रहता था, वो किसी का एड्रेस नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता। इस रियल लाइफ ने आपके लाइफ को डाकिया बना दिया है। चलो ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल आपसे पूछूं, क्या आप कभी सागर के किनारे गए हो, किसी ओशन को देखा है आपने? देखा है क्या उसकी लहरें काउंट कर सकते हैं आप? नहीं ना। आपको पता है कि आपके फ्लूइड भरा हुआ है दिमाग में और उसमें ये 30 सेकंड की लहरें चलती रहती है। पहले 30 सेकंड की लहरें नहीं चलती थी, दिमाग शांत रहता, काम रहता था, जैसे बावड़ी का पानी रहता है, तालाब का पानी रहता है। अभी तुम्हारा दिमाग केवल वो तरंगे वेव्स वेव्स वेव्स वेव्स वेव्स रियल रियल लाइफ से रियल लाइफ में आना है कि रियल लाइफ में जीना है? मुझे भी पूछोगे तो मैं बहुत छोटा सा सुझाव दूंगा आपको, सब अपने मोबाइल में से इंस्टाग्राम का ऐप जो है डिलीट कर दो, और कोई भी मोबाइल पर 15 मिनट से छोटी रील नहीं देखेगा। यूट्यूब पर भी देखोगे तो 20-15 मिनट के अधिक रील देखोगे, छोटी रील नहीं देखोगे। इतना भी प्रयोग तुमने कर लिया तो तुम्हें रियल लाइफ शुरू हो जाएगी। आई सजेस्ट सिंगल सजेशन, मैं आपका मोबाइल नहीं छीन रहा हूं, इंस्टाग्राम पर तुम ये जो 30-30 सेकंड के जो खेल खेलते हैं बंद करो, इसमें दिमाग तुम्हारा थक रहा है, दिमाग टायर्ड हो रहा है, दिमाग कचरा कुंडी बन रहा है, आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं हो रहा है, दिमाग सिंक होते जा रहा है, ब्रेन सिंक होते जा रहा है, किसी सब्जेक्ट पर आपका फोकस होता ही नहीं है, कि फोकस की ट्रेनिंग ही नहीं रही आपके पास। मैं तो बहुत सोचता हूँ कि तुम्हारे 30 सेकंड के इसमें से तुम और 5 साल के बाद तुम्हारे दिमाग की क्या हालत होगी, कल्पना कर सकते हो क्या तुम लोग? कल्पना करो कम से कम स्वयं के दिमाग की 5 साल के बाद मेरा दिमाग कैसे होगा। दिमाग रहेगा नहीं, कहां से पेशेंस आएंगे तुम्हारे में? और वही तुम्हारे जिंदगी में हो गया, जॉब में हो गया, एजुकेशन में हो गया, बस छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टच एंड गो टच एंड गो टच एंड गो टच एंड गो टच एंड गो। ये क्या चल रहा है? थर्टी सेकंड के रील बनाने के लिए कितने मिनट लगते होंगे? एक 30 सेकंड की रील पोस्ट करने के लिए कोई है आपका इसमें मास कम्युनिकेशन में काम करने वाला जो बताएगा मुझे कि 30 सेकंड के रील बनने के लिए कितना टाइम लगता है? आई डोंट नो, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या 30 सेकंड की रील 30 सेकंड बनती है? कितना टाइम लगता है उसको बनने के लिए?
5: एक
0: घंटा लगता है। अब एक घंटे के रील को अंडरस्टैंड करने के लिए कम से कम 5 मिनट तो लगने चाहिए ना। अब तुम 30 सेकंड की एक घंटे के रील को 30 सेकंड में देख करके फ्री कर रहे हो, ये रियल लाइफ नॉट रियल लाइफ, ये सब वर्चुअल हो गया ना, सब वर्चुअल चल रहा है। आंखें खराब हो रही, दिमाग खराब हो रहा है। और कोई आपको सबसे बड़ी सुंदर बात तो क्या है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्या आपके पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं इन दिनों में? मुझे पिछले साल का एक प्रसंग याद आ रहा है। गुरुदेव का जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था पुणे में, दिगंबर संत को लेने के लिए छोड़ने के लिए मैं गया, वापस लौट रहा था तो मैंने देखा लौटते हुए चुपचाप आ रहा था, तो पीछे बैठे हुए जितने भी समझदार लोग थे वो सारे मोबाइल पर थे। मैंने स्टेज पर जाकर के कहा कि मेरी गलत फहमी दूर हो गई जो मैं स्टेज पर से देख करके आया हूं। आगे जाकर के मैं सोच रहा था कि सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और पता चला कि कोई मुझे नहीं सुन रहा है, सब मोबाइल पर है। आज ही मैंने एक व्यक्ति से बात करी कि दोपहर में जन्म कल्याण का वचन था ना, तो उन्होंने कहा आपका जन्म कल्याण का वचन बहुत अच्छा हो। मैंने कहा आपके यहाँ चौमासा चल रहा है ना, वहां भी जन्म कल्याण का कार्यक्रम वहां होगा ना, आप गए थे क्या वहां पर? बोले गई थी ना। फिर मैंने कहा वहां तुम, फिर मेरा कार्यक्रम? बोले मैं पीछे बैठी थी। और मैंने कहा पीछे क्यों बैठे थे? बोले मोबाइल पर आपका कार्यक्रम देख रहे थे, आप बैठी वहां पर हैं और कार्यक्रम मेरा देख रही है। अब क्या कहूं मैं इसको? आप में से कितने लोग अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कितने मोबाइल पर देख रहे हैं और कुछ? सब क्लास अटेंड कर रहे हैं कि कुछ मोबाइल पर देख रहे हैं? कोई है क्या चेक करने का जरिया कि क्या कर रहे लोग? आज ही मैंने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा है कि एक नया स्मार्ट वॉच आया है, आपके फोन में एक डिवाइस लग गया है, हर 15 सेकंड में, हर 15 सेकंड में हार्ट की आपकी रिपोर्ट देगा, हर 15 सेकंड में, 15 सेकंड में आपके हार्ट की रिपोर्ट देगा। मैंने कहा पक्का हार्ट फेल हो जाएगा, ईच एंड एवरी 50 सेकंड में हार्ट की रिपोर्ट, तो कितनी अपडाउन होगी। और वो पढ़ करके तो बेचारा टेंशन में चला जाएगा। आप में से किस किस पास स्मार्ट वॉच है जो रात को लगा कर सोते हैं? आपके पास है ना, फेंक दो उसको। मैंने फेंकवा दी बहुत लोगों की, करते क्या स्मार्ट वॉच? सुबह उठे कि देखते हैं मेरी नींद कैसी हुई थी, कितने बाद क्या हुआ था, क्या हुआ था। अरे क्या हुआ था, जो होना था हो गया ना, काय को दिमाग खराब करता है। मेरा ब्लड प्रेशर कब कम होता है, कब ज्यादा हुआ था, मेरी ब्रीदिंग कब स्लो हुई थी, ये हुई थी ना, उसी चिंतन चिंतन में एंजाइटी में चला जाता है आदमी। ये सारी रियल लाइफ आ गई, रियल लाइफ। इसलिए जिंदगी का असली मजा आप ले ही नहीं पाते हैं। अभी तो मुझे बंबई गए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन बंबई के बाहर बंबई वालों के फार्म हाउस बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए रहते हैं, लोनावड़ा, नेताल, नेरल, मतलब बड़े फार्म हाउस बने रहते हैं। और उस फार्म हाउस पर बड़ा मस्त फार्म हाउस रहता है, उस फार्म हाउस पर ओनर कब जाता है? महीने में एक बार। और पूरा महीना उस फार्म हाउस का मजा कौन लेता है? वॉचमैन। उस वॉचमैन मजा भी लेता है, तनख्वाह भी लेता है, और टैक्स वो मालिक भरता है, एंजॉय वो कर रहा है। आपकी भी ये आदत हो गई है, आपके दिमाग का सारा वसूल करते कंपनियां, आप तो बस ओनर बनकर बैठे हो, मजा तो और कुछ ले रहा है। जिंदगी का असली मजा तुम लोग खो चुके हो। सच बताओ, यदि आपको किसी कमरे में 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, खाने को सब कुछ दिया जाए और मोबाइल छीन लिया जाए, 3 दिन में तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? वो प्रेरणा बता रही थी आपको कि राइजिंग सन के रिट्रीट के वो जानकारी आपको दे रही थी, 3 दिन के ध्यान में रखना, सोच समझ करके आना। मेरे यहां जो भी रेसिडेंशियल शिविर होते हैं वहां मोबाइल नहीं रहता है, मोबाइल छीन लेता हूं मैं, बिना मोबाइल का 3 दिन लगता हूं। राइजिंग सन में वही नहीं है ना प्रेरणा? हाँ, लेकिन बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, 3 दिन को मोबाइल की याद आती नहीं, दिमाग फ्रेश हो जाता है। केवल तुम्हारा मोबाइल भी 3 दिन निकाल लिया जाता तुम फ्रेश हो जाओगे, रियल लाइफ में आ जाओगे। और नकली जिंदगी जीने वाले है ना, आर्टिफिशियल लाइफ जीने वाले, आर्टिफिशियल है ये आई तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइफ जरूर हो गई आपकी। जरा रियल लाइफ में आओ, असली लाइफ में आओ, आर्टिफिशियल लाइफ से क्या होगा? अरे आ सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल एक छोटे से आज कमिटमेंट करिए कि हम अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर रहे हैं, एक 7 डेज के लिए प्रयोग करिए, 7 डेज के लिए इंस्टा, नो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, और क्या तुम्हारा और बहुत सारा है ना, क्या लिंकिंग के लॉन्गिंग क्या क्या क्या पता नहीं क्या क्या है। ये सारा बंद कर दो, मोबाइल रखो, जो भी देखना है वो कम से कम 20 से 25 मिनट का देखना है, 30 सेकंड का कुछ देखना, और देखो आपको क्या रियल लाइफ का मजा आता है। वो पुराने मूवी बनाने वाले हैं थे ना, वो 3 घंटे की मूवी बनाते थे, अब तो एपिसोड चलते 20 मिनट के, और 20 मिनट में सारी बात कहनी होती है। मेरे पास कई बार ये लोग चैलेंज देते हैं सोशल मीडिया वाले कि आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करो, मैंने कहा 30 सेकंड बात पूरी करना पॉसिबल नहीं है, कोई पापड़ थोड़ी सेकने, पापड़ सेके जा सकते 30 सेकंड में, लेकिन रोटी सेकने तो टाइम तो लगेगा। रियल लाइफ से रियल लाइफ में आना हो तो 30 सेकंड का गणित पक्का प्लीज बंद करिए। परिश्रम पर्व चल रहा है, मैं आपको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम अगले 3 दिन तक जो है इस 30 सेकंड के चक्कर से बाहर निकले। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट फिल्म, अरे क्या की शॉर्ट, सब शॉर्ट हो गए। लाइफ रियल है कि रियल है, लाइफ रियल है, रियल लाइफ को एंजॉय करिए, मजा आएगा ना। ओके 10 बज रही है और क्वेश्चन में लिस्ट लंबी है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी,
5: इंस्टाग्राम पे जो मैं देखता हूँ तो मैं इंफॉर्मेटिव रील्स इतना कुछ करके देखता हूँ, बट वो बीच बीच में टाइम पास रील्स भी आते हैं, तो जो नॉलेज वाले रील्स होते हैं वो 30 सेकंड से आप 1 मिनट होते
0: हैं। भैया 30 सेकंड में नॉलेज नहीं मिलेगा ना, ये आपके दिमाग की प्रोसेस करने के लिए समय लगता है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताई है, आता है क्यूरियोसिटी होती है, डिसीजन होता है और फिर स्टोर होता है। आपको यदि लगता होगा कि आप मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेटिव देखते हो, मैं आपसे ही पूछता हूँ कोई इंफॉर्मेटिव आप जो देखते हैं 30 सेकंड में आपको याद कितनी रहती है, कैसे याद होगी, होगी नहीं ना, टच एंड गो में। काय के अपडेट देखते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, कितना ही देख ले तो रहता कुछ नहीं तुम्हारे पास, वो हवा का झोंका आ इधर से आता है ना उधर चला जाता है, क्या काम आएगा। अब वो स्टोरी सुनाने जितना टाइम नहीं मेरे पास, लेकिन देखो राजी हो, इससे पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है ना, देखने से बेटा दिमाग को भी खाना चाहिए ना, खाने के लिए टाइम लगता है। यूट्यूब भी देखिए, मैं आपको मैंने इतना ही कहा है कि शॉर्ट मत देखिए कुछ भी, जो भी देखना है आपको मिनिमम 20 से 30 मिनट का देखिए, तो 20 से 30 मिनट का आप देखेंगे तो एक सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये शॉर्ट से कुछ नहीं होगा भैया। एक बार मेरा मैं जो कह रहा हूं आपसे, एक 3 दिन के लिए प्रयोग करके देखिए कि शॉर्ट कुछ नहीं देखोगे, जो भी देखोगे लॉन्ग देखोगे है ना, और फिर देखिए आपका दिमाग कैसे रहता है, फिर आपको नींद कैसे आती है। कैसे सब्जेक्ट अंडरस्टैंड होता है? देखना पड़ो कर करके, और मुझे रिपोर्ट देना, कल ही रिपोर्ट दे देना। कल के दिन तो बंद करो इंस्टाग्राम, शॉर्ट फिल्म कुछ नहीं देखोगे, इंस्टाग्राम पर भी नहीं, लिंक्डइन पर भी नहीं, फेसबुक पर भी नहीं और यूट्यूब पर भी नहीं, शॉर्ट कहीं नहीं देखोगे। जरूर जरूर, धन्यवाद आपके प्रॉमिस के लिए, धन्यवाद। सेकंड नेक्स्ट, हाँ जी,
6: आपने जैसा समझाया तो वो मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले से कर रहा हूँ। मुझे ये भैया की जैसे ही न्यूज देखने की आदत थी इंस्टाग्राम, वहाँ पे इंफॉर्मेटिव न्यूज भी आती है, पर बीच बीच में जो टाइम पास होता है उस वजह से मैंने वो भी छूट गया था, तो फोन में ही थोड़ा सा न्यूज पढ़ लेते हैं, और उस वजह से मुझे सबसे 2 महीने में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे रात में जल्दी नहीं आती है, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, दिन प्रोडक्टिव होता है, और फोन देखने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि रील्स के अलावा जो बाकी चीज मुझे वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो देखने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है पढ़ाई के अलावा, तो उसकी वजह से फ़ोन भी ज़्यादा नहीं देखना चाहता अदर देन स्टडीज।
0: बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट,
7: ऑल्सो एक थिंग आई वॉन्टेड टू हाईलाइट कि मयंक, आई टेक हिम ऑन स्पॉटलाइट कि उसका बेला है, और वो मतलब उसकी मम्मी आज मिली थी तो उन्होंने बोला था कि वो बिल्कुल फ़ोन नहीं देखा 2 दिन, क्योंकि आपने बताया था, और उसके घर पे बाकी दादी पापा उनको उसको आग्रह कर रहे थे कि तू फ़ोन देख ले 10-15 मिनट, तो भी उसने बोला कि मार साहब ने बोला है फ़ोन नहीं देखना, तो मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा।
0: मयंक, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन, स्पेशल तपस्या से अधिक अभिनंदन मोबाइल नहीं देखने का। दादा दादी मम्मी पापा को कह देना तुमने मारा साहब ने मना किया तो मुझे देखने के लिए कह रहे हो, गलत है बोलना।
8: हाँ, मोबाइल नहीं देखा इसका मेरा बेला बहुत अच्छे से हो गया।
0: वाह वाह वाह, ये बात है ना, रियल बात है कि देखेंगे तो लिवर डिस्टर्ब हो जाएगा।
8: आपने वो उस दिन ब्रेन रॉट वाले सेशन में बोला था, इसलिए मैंने बोला कि मुझे कोई परेशानी ना चाहिए तो मैं मोबाइल नहीं देखूंगा।
0: यस, मोबाइल नहीं देखा तो तब से बहुत सॉरी हो जाती।
8: हाँ, मैंने टाइम पास के लिए बुक्स रीड किए पर मोबाइल नहीं देखा।
0: वाह वाह, मस्त, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मयंक, मयंक, वाह नाइस। हाँ जी बोलिए। बड़ा जोर से बोलेंगे, शॉर्ट्स देखना ही नहीं,
8: मतलब वो ही वीडियो में आता है
0: फिर। बस वो वीडियो देखना, तो शॉर्ट को देखते हैं।
7: थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जतिन जैन भैया।
9: जैसे आपने कल बोला था कि इंटरमीडिएट मतलब व्यासना करना चाहिए हमको डेली, क्या प्रश्न है, मैं जैसे अभी जिम जाने लग गया तो मेरे को बल्किंग करना है, तो व्यासना में हाउ इज इट पॉसिबल दैट बल्किंग करना?
0: यस, आराम से पॉसिबल है। आप जिम जाने के पहले प्रोटीन्स ले लीजिए, क्रोश ले लीजिए, मलबांड ले लीजिए, ना बैठ करके आराम से लीजिए अच्छी तरह से प्रोटीन, और जिम से आने के बाद आराम से 1-1.5 घंटे के बाद व्यसना छोड़ लीजिए, 2 समय हो गए आपका, आराम से हो जाएगा व्यसना। और यदि आप इस तरीके से करोगे ना भैया, क्या नाम आपका? जतिन, आप यदि इस तरीके से करोगे तो मुझे 15 दिन के बाद रिपोर्ट देना, आपका फैट कितना कम होता है, मसल कितने बढ़ते हैं। केवल एक प्रयोग करके देखना और प्रयोग करके रिपोर्ट देना मुझे। यदि आपने जिम वर्क करने के पहले, वर्कआउट करने के पहले आप प्रोटीन भरपूर लेंगे, और प्रोटीन भी कैसा लेंगे, प्रोटीन पाउडर मत लेना। प्रोटीन पाउडर नहीं चालू करना, प्रोटीन पाउडर नहीं लेनी, बादाम लेने, काजू लेने, मूंगफली लेनी, चना लेना, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना। प्रोटीन पाउडर को डाइजेस्ट करने के तुम्हारे बॉडी में कोई सिस्टम नहीं है।
9: मैं एक्चुअली सुबह सुबह जाते समय
0: मूसली खा के जाता हूँ, ओट्स वगैरह खा के जाता हूँ। हाँ ठीक है ना, यस यस नाइस। लेकिन मैं आपको सभी को कहता हूँ जो भी वर्कआउट को जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर लेने के खतरे मत खेलना। प्रोटीन पाउडर में किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, उस कारण से आपको लगता है कि प्रोटीन पाउडर मुझे ताकत दे रही है, लेकिन प्रोटीन पाउडर कभी भी, ये सब मार्केटिंग है, इंडस्ट्रीज है, डाइजेस्ट होता नहीं, केवल बॉडी दिखती है और फिर समय पर कोलैप्स हो जाता है। कोच कहते हैं प्रोटीन पाउडर लेने के लिए, लेकिन भूल करके भी मत लेना। खजूर लीजिए, खारिक लीजिए, बादाम लीजिए, काजू लीजिए, है ना, इनको लीजिए।
9: गुरु जी, मैं एक मिक्सचर लेता हूँ जिसमें बादाम, काजू, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड का मिक्सचर हो गया, फिर उसको दूध के साथ लेता हूँ।
0: नहीं अच्छा है, वही इज नाइस। दूध के साथ लेते हो तो ध्यान में रखना, दूध के साथ नमक मत लेना, कुछ भी तो जो ये ड्राई फ्रूट जो है,
9: पिस्ता भी है।
0: हाँ पिस्ता, लेकिन सॉल्ट नहीं चाहिए, बिना सॉल्ट का पिस्ता चाहिए, विदाउट सॉल्ट। दूध के साथ सॉल्ट नहीं जाना चाहिए, धन्यवाद। जरूर जरूर, ओके थैंक्स। 10:05 हो गई है, संवत्सरी के उपवास की तैयारी करिए। मयंक ने तेला कर रहा है तो आप संवत्सरी के उपवास की तैयारी करिए, है ना। आज हमारे पास अब बस कल और परसों के 2 दिन बचे हैं, क्या आप लोग मुझे कंटिन्यू मिलना पसंद करोगे? क्या जिन जी का हम वीकली क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन? राइजिंग सन के लिए आमंत्रण है आपको।
10: राइजिंग सन का ऑनलाइन बैच है नवंबर से, और अक्टूबर में रेजिडेंशियल बैच है।
0: पहले रेजिडेंशियल में आना, बिना रेजिडेंशियल में आए ऑनलाइन मजा नहीं आएगी। कब है रेजिडेंशियल? सेकंड थर्ड फोर्थ है क्या?
10: टू थ्री फोर अक्टूबर।
0: छुट्टी का समय, आ जाइए, 3 दिन मेरे साथ एंजॉय करिए, मैं भी आपके साथ एंजॉय करूंगा, थोड़ा मैं भी जवान हो जाऊंगा जवानों के साथ रहते हुए। या तो आप मेरे साथ जवान हो जाओगे या तुम तो मेरे साथ जवान होगे, दोनों में से एक तो होगा। पता चलेगा 3 दिन साथ में रहने के बाद आपके साथ मैं जवान होता हूं कि मेरे साथ आप जवान होते हो।
10: कंपटीशन,
0: यहां से कंपटीशन कर लेते हैं, 5 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे मेरे साथ, मैं चलूंगा अभी।
10: हाँ
0: क्या बोले?
10: बिहार का एक्सपीरियंस है, वो पार्टिसिपेंट ऑलरेडी नहीं नहीं दिखा रहे।
0: नहीं नहीं दिखा रहे? क्यों भाई, क्या हो गया?
10: भागना पड़ता है।
0: मैं तो चलता हूँ ना, तुम भागते क्यों? चलो मेरे साथ, भागना नहीं। मैं मैराथन रन थोड़ा करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। चलो दूसरा काम करते हैं अपन। मेरे सामने एक बिल्डिंग है, जस्ट 7th फ्लोर है। 7th फ्लोर चढ़ने और उतरने, 7th फ्लोर चढ़ने और उतरने, 7th फ्लोर चढ़ने और उतरने, 3 बार करने एक साथ बिना सांस फुलाए। किसने किसने हाथ लगाया गल चेहरे को? मैं एक सांस 17 मंजिल चढ़ चुका हूं एक सांस में। मजा आती है। चलो आओ तो सही। बोलो क्या बोलो? आपका गुस्सा कंट्रोल करना है। बिल्कुल सिंपल बात बताओ कि लंबी बात बताओ? मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, आपको शॉर्ट में उत्तर दूं कि डिटेल में उत्तर दूं? बस जिस पर गुस्सा आता है ना उसके गले लग जाओ, जिस पर भी गुस्सा आता है उसको प्यार करो। गुस्सा नहीं करना ये नहीं कह रहा, प्यार करो उसे। बस जब भी गुस्सा आए ना मुस्कुरा कर देखो उसकी तरफ, मजा आ गया। देख भैया प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं सोशल लाइफ में हूं, सोशल लाइफ में हूं, और एक दिन में कम से कम 20-25 लोग तो ऐसे मिलते हैं कि जिनके विवेक पर गुस्सा आता है। 20-25 तो लोग तो मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि तो आपको पता है मारवाड़ी लोगों को कॉमन सेंस तो रहता नहीं। कॉमन सेंस लेस कोई कमेटी देखने तो मारवाड़ी है। पहले मैं थोड़ा सा गर्म हूं, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, जैसे कॉमन सेंस लोग आते हैं ना, एंजॉय करता हूं, हंसता हूं उन पर, गुस्सा नहीं करता हूं, हंसता हूं। तो उन पर गुस्सा करके मैं नॉन सेंस हो जाता था, अब उनके नॉन सेंस को कॉमेडी बना लेता हूं, एंजॉय करता हूं। अभी 1 घंटे पहले ही एक टेस्टी नॉनसेंस बिहेवियर कर रहा था। मैं उसको कह रहा था ऐसा मत कर, नहीं नहीं मैं तो ऐसा करता, मेरा नेचर ही हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया ओके। तो बिल्कुल सिंपल है ना, कोई भी कोई नॉनसेंस काम करता है तो उसके साथ नॉनसेंस नहीं हो रहा ना, उसके नॉनसेंस को एंजॉय करना। कर सकते हो क्या? ट्राई करके देखना। थैंक यू तिथ्यना समय पर सिद्धा सिद्धि समय दे संतो।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: जा। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
2: स्नेहालय संचलित स्नेहदीप रुग्ण सेवा केंद्र, परावलंबित्व आलेल्या सर्व वयोगटातील रुग्णांना दर्जेदार निवासी सेवा, सुश्रुषा देणारा उपक्रम म्हणजेच स्नेहालय संचलित स्नेहदीप रुग्ण सेवा केंद्र। सर्व वयोगट, आजारपण, अपघात, शस्त्रक्रियेनंतरचा बरे होण्याचा काळ, वृद्धत्वातून अनुभवलेल्या शारीरिक आणि मानसिक आजारातून बरे होताना आवश्यक ती परिचर्या, काळजी आणि सुश्रुषा घरगुती वातावरणात आणि रास्त दरात पुरवणारा एक उपक्रम म्हणजेच स्नेहालय संचलित स्नेहदीप रुग्ण सेवा केंद्र। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9970064455 किंवा 7499980845 या क्रमांकावर। एक वेळ अवश्य भेट द्या स्नेहालय संचलित स्नेहदीप रुग्ण सेवा केंद्राला। पत्ता: डॉक्टर आंबेडकर पुतळ्याजवळ, हॉटेल अंबिका मागे, नगर पुणे रोड, केडगाव, अहिल्यानगर।